बिन निर्वाण नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन

काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि नहि रक्षति दुःखं करणे नहि नहि रक्षति।